0: बुरि रगनि जे जोंजाल गोबां खख्लायि अ बुरि रगनि बिसिंगनाव अब गोबां खख्लायि नगौ बुरि रगसिमिया जेला रंनि बिसिंगब अब नगौ फियाबा बुरि रगनि बिसिंग अब गोबां खख्लायि जों नुगजागौ बुरि रंनि बिसिंग जे नुगजाबमानि अब जों साना थाखायगे बुरि रंनि जे जामुं जाथानि गान्धीनग रगो जों गान्धीनग कचिनि बुरि रगनि यागो हाइफानो जों जेफोर जामुं जाओ जतन दै दुलै जतन सारिमानि बिसिं दै खालायि जों दिनै बुरि रग दंथक जागो अब हाइखलायन खा पानजिव जतन सारिमानि आगल गुथुं गुथुं सारिमानि आगल जों बुरि रग बायथागो जेफोर जाओ जाना आजुगो आफ्रिंखे मुइ माइमुइ रग गोजां उङै थाङो वासु वासु नगराय रग फायखे हिंगे हिंगेबो जिनि माइमुइ रग कलयाव थाफोर हिंगे बुरि रगनि बिसिङाव नुजागो अबहाय माइतुलु रग जावै फाय माने आथानि फियाबा बुरि रगनि बिसिङाव भिटामिन रग एबा खायबा जे नांगौमानि सागो अब मानियाव थाव आथानि फियाबा जिनि थाखाय जाहिंगे सापुं सालकलख रमै थमा बसा द्रबनि सिमि रमै सामुं खालायथानि फियाबा जों वासा वसु अबहाय खालायो जों सागनि फायसिं नायकलनानि जरा माया अंथाव आथानि गोबां खख्लायो आर्थ्राइटिस एबा खायबा आर्थ्राइटिसनि जे बाद अब बुरि रंनि बिसिंग नुजागो जरा गोदोंमा रमै आसुगै सामुं खालायमानि एबा जरा गोदोंमा रमै बसावै सामुं खालायमानि एबा खायबा जेफोर चेराय बुमा पुइला गोदानांगौ आफोर चेरायनो जों खिसु बौरग जों पालटनानै बागै जों हर साइड गायसा खालायै बुरि रगनि बिसिङाव थमानि नाव फियाबा जेला रग जिदै खालायै थयमानो बुरि रग बुमा जेफोर दङ आफ्रो थयमानि आबोनि बागै द्रोग द्रोग खालायै जिनि बसाखौ गेबेल नुगमानि नुगजागौ आफ्रोनि सिमिन जिनि आर्थ्राइटिस रोग द्रोग द्रोग खालायै बेमार जेंजागै थाङो गे आजराव जों बुरि रग दुमुंन गाहाम खालायै साग नायकलनाय रग बाय बिथि नायजागै बिथि बोराय रग जाया हिंगे अब दंरोगै थाङो जों जतन सायमानो बाद अबहाय खायसे बेमार जों बिथि बै अबनो जों साग रग जों योगा रग खालायमानि बिसिंदै अ बेमारनो जों या गागैमानो हिनै सायमानो फियाबा गाहाम खालायै बायसगै अब या गागिया अबाव जों सायमानो फियाबा जों दुमुनो साग नायगलनाय रग सामादै दुमुनो बिथिबोराय जाखायगे जों अबनि या गागैमानो जे जों साग गाहाम गोरों खालायै जों दंगैमानाय हायखे आसु जरा जों खोनालायखे साग हामग्रायो आर्थ्राइटिस नतै गक थाइजा थाइनै
1: ao pai ditaba san tang bitiwo bin kai mana tei chaja thani kok sila ena bin sini baki bela ki mai kitan kaham bono badur talono kai mani nuk jago omi kui thung sobai hai chini kami amsai rogo ke nok sonok ari bari okthai lahar gandaro khetoni lai rogo pukhiri par rogo sai kai mani nuk jago बीन कैनानी हंगाके सीधा तंगसाओ मीटर कैसे हक साल के बासी सेंटीमीटर केबें गई केबें कसंग कुआर या के हाकर थूक मानी सेंटीमीटर ब्रे सीबा हंगनानी नांगनाई हाकर खरसाओ मुस्किर नानी नांगो सेरसी टीएसपी नांगो सारा बासी ग्राम एम ओ पी नांगो सारा ग्राम अब हाकर खुरबाई कायनानी सालसी सेकांगनो सप्लुई रिनानी नांगनाई

बसलै कैनानी सालसा सिखांग नतियो सम सावि तनखाके बेलाके नसाओ बसलै नांगो हेक्टर कायसाओ सेरसनि बफांसार आसाइमानि ताल सानि उलो फिलासा ते खम बुबार बार फुरवताय फिलासा सारक रनानि नांगो बफांसारा याफांग्रान ओंगै दंखाके सिटि साथायके दैनि सेप मा दनिनाय बुदु सेन्टिमिटार नैसि लखेनो दं एबाखे मासा तांगिरनानि नांनाय अभाखेन ताल थामनि उलो कायमानि ताल थामनि उलोनो बथाय मानिमानो ताय बथाय थायखाके थायमानि ताल थामनि जरा तेख्लाय चयावैनो बथाय मानि दंनाय बिनो दङ फसफरास प्रोटीन भिटामिन सी ताय क्यालसियम आकर आसुजरा बिन कायमानो तैथाय सानि कक जों सिलायख्या फारित अवस्थान कक थमो थांलायग्रावानो टिपिएससीनि बेखाथि कायसा कक मंग साख्लायजाक दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसर फिजिकल एजुकेशन जे कयमंगलाय रनाय राव बरकनि दादा तिथाक मालाय मं याखबा इंटरव्यू दंनाय ओबीसीनि अगस्तनि साल नैसिसिनि सालमारि बाय जाय नैसिसार सालमारि वा जराहाङाके फुंनि दामसि ताय थामसि सति तामफ्रुव ताय दिबर जरानि दामनै ताय थामसि सति तामानि जराव आबो ओंनाय टिपिएससी अफिस आखाउरा रुद तेखेसा दङ सुपार हान्ड्रेड स्किम नैसाय नैसिदक ख्रीष्ट बिसिनि अबंका त्रिपुरा ट्राइबेल डिपार्टमेन्टनि बखाक्तिके कायसा कक मंग साख्लायजा जे सिभिल सार्भिस आमजक मंग आसुखनानि बागै मुसुंनाय रग बरक अकय मंलाय रिमान्नाय रोंमारि ओंनानि नांनाय गसिजेक इउनिभार्सिटिनि ग्रेजुवेट लगेव 60% मार्क मानजाक नायनि नांनाय आबनो कारिब बेबागै आबो थांनाय खरक ब्रैसि ताय जि नीटनि बागै खरक दक्सि आबो बरग दफारकनि बागै सिमिनो खाथिजाक नाय बरबो कयमंगलाय रिमान्नाय कयमंगलाय रिनानि पाइथाक सालमारि अबिसिनि अगस्तानि साल थामजिसा सालमारि नेबेसिंग देव कामके सिनानि बागै वेबसाइट नायमान्नाय www.twd.tripura.gov.in वेबसाइट त्रिपुरा डिग्री कलेज एडमिशन नाहारजागै दङ कोर्संखा बीए बीएससी बीकॉम रंगमारी क्लास 12 पास अबो कोर्संनाय बेसिक ब्रेनि बागै कमयंलाय रनानि पाइथाक सालमारि दिनिनो इयाखबा ओ अगस्तानि साल जिसा सालमारि टीआरबीटी टीटेट आरो पेपर वन बाय पेपर टुनि बागै आमजग मं नाहरनानि बागै कयमंलाय सानजाखा पेपर वान ओंखा क्लास वान इसिम क्लास फाइभ ताय पेपर टु ओंखा क्लास सिक्स निसिम क्लास एइट कयमंलाय रिनानि पाइथाक सालमारि अबिसिनि अगस्तानि साल सिबा सालमारिनि सारिकनि दामब्रिनि बिसिंग आमजग मंनि बागै सालमारिबो साख्लायजाखा पेपर वाननि बागै अबिसिनि डिसेम्बर दाननि साल दक सालमारिव ताय पेपर टुनि बागै हिंगाखे डिसेम्बर दाननि साल जिथाम सालमारिव जरा साजाक दङ दिबनि दाम जिनै निसिमि दाम नै ताय थामसि सति जरा आसे जरा कक थुम्रकजों खोनालायखा दाबो सेबगो बरकलांमानि खोनालायानो

बजबना नांनाय फोरोंना नांनाय जों जराय रक्न जलिउय नासिलाउय खरां गतर खेसाउय जलैतै कुलतुतै कुतुकै फोरोङै जों मानिया बनि बागै जों बरक्न हामजा गुंनि बिसेंदै गोजां गोजां फिगुं बुथेबै बखरगै आग्रुय जों बरक्न फोरोंनानै नांगौ उजे मानै दं मानि ग्लाय साहाय के बरक जे वान सुगै दं मानि अबरक अब ग्लाय साखे फाइमानैया बुमा बुफा सामुं ग्राक दांगै ग्राक के कस्त' ख्लायै परिश्रम ख्लायै याग बायथां थैनि कलमदै खेख्लायै सामुं दांगै अरां पैसा अमानै खोनै आसोग आराम गथक जामुं नोमुं गानमुं जमुं गाहाम गाहाम नायथक नायथक बेबाक न' आब' आहायन' एरांखौ सकबाय मानैया आब' कस्त'नि बिसेंदै सकबाय मानि दे आबरक न' जों मेलुरना रोंमानि आबरकनि मरक रांमारिनि जों सिना नांमारक जों उजरायन' सिया खासिया वानसुकना रिङाङै दं जिरायनिसै मोनो जों बन' गोजां गोजां अक गोजांमाय फोरोंमानि आवबो बेलायखेना इफेक्ट खायो जेरायरकनि सागं जत' बरकनि सागनो गोजां गोजांखे सामानि जलिउ सामानि आब' कक गाहामबानो सागाहांखाय आब' जेरायरक खानानाबो मोजां जागिया आब' हाय ओंनाबो मोजां जागिया जलि माने नासिलायमानि हायखाबा गायसा बखरग' टेनसन हायखाबा खिट खिट आबाहाय गायसा मेजाज ओङै बरकनि थांग' नों वाइसा जलि सामानि ते वाइसा पुरु जलि फान सागा जलिया फानो सागा आब'न' बरक खानाना मोजां जागिया नाना मोजां जागिया ओंखाय आब'न' जों जेमान माने आब' जों जारायनिसिमि खागाना रोङिया वानसुगना रोङिया ओंखाय जों बुमा बुफारक फानो मा फोरोंनाय आब' बुमा बुफा बसाना हामजागै रोमानि फानो बन' जों वाना जिन्दाव खेख्लायना मोजांया बिनि लांमाबो गाहामखे थांथों होनै होनबानो उ मानै खोनै जिनि सामुं खायमानै जिनि कस्त' आब'नि वानसुगमुं खागामुं जेरायरकनि सागो बोखाव' दंनानै नांगौ फारि नरक बाहायन' अबे जाब' मुंसासोग साना मोजांखे नरकबो सायमानाय नरकनि कक नरकबो नारागै मानाय नरकनि बोखाव' दामु वानसुग अ कक रकन' दैनाय फारि नरकबो गोरोङै आंमै बाक्सा सादि ककदुगनिमारि 03812322623 अ ककदुगनिमारिबो ककदुगलाय आंमै बाक्सा गोरोंदि ककदुग से फाय दंखा नाय नायग्रानो हेल' हेल' आंनि खरां न' आंनो खोनाय दंसिव' आब'नि बागै नरकनि साब' बंखा साइसि मानलिया हाय नाय गोरों फिदि जों गोरोङै मानलायानो जरा जराव' मेसिननि मानै रकबा डिस्टार्ब मुंग' गग्रै जों खामा लगलायनाय गेब' ककदुग ख्लायमां ख्लायमां माया होनाय जलिउय रक दाय ककदुग खोस खायलिया रकनि रक दा वानसुग द्रोंदि नरकनि हामजागमा नरकनि कक मुं नरकनि कक बिदि जों जत्न' नांगौ नायनाय ना हायनाय ककदुगा साब' दं हेल' अबाहायनो अबाहाय ओङै दं जावखा सायमालिया दामजानिखा नरक जायदक फिदि हायनाहाय गोरोंनानि बागै आं दङ नरकनि ककदुग नया जागनानि बागै हेल' सायमालिया दामुंखा आंनो आं खोनाय दं आंनि खरां न' आब'नि बागै नरक ककदुगबाय गोरोंनानि बागै जायदगै दं दि आं हायन हाय नरकनि थानि मा गय' गोरोङै मानलायान होनि मा खाखाव' आव फारिखे जों अ खागा माने अ वान सुख माने अ जों माने खोनायनो बेलुरना नांमानै हायखोबा जरा बरक दाबुग्रमदि जों माफा माफा जिनि दाखौ बुखौ जिनि आजायसं जत्न'नो जों बेलुरनानै नांगौ जत्न'नो जों हामजाक मुंग्रानानै नांगौ तारमानेखे जों सोंजार' सालसे सालसा जों जत्न' याक्रिमा थांनाय आब'न' औवा लायै जलि लायै नासिलो लायै कक सालाया नासिग लाया खाब जालाया आसो हामजाक थायलाया आसो कक रंनो सेयार खालायना मोजांया ब्रकनिबो खोनाना मोजांया अबाहाय ओंमारक बेलायखेन' जों जरान' हामिया खालायनाय लाय दंमानि खालायो जों जेसो मानो अ जरा रकन' अ जिनि दा बुकनि अ जरा रानिं ओङै दं अब' बायनानैबो खाखनो थाङै दङ जलै दङ होनै होन माने आब'

बाक्साया ब्रनि कक सामानि वान सुखमानि सामानि नों माने गामोन जत बरकनि न' जुदा जुदा कक सातेनिबो जुदा ओङै मानो हाइफानो जों किसि इच्छा खुगदै मनगै कक खानानै खानो किसि सामाय थाबै कक खानाय दंनानै इ अब हाइरक जों जिनि साग सयमानि साग सयमानि आबो जों दंनानै नाङ' हाय जों स्राय स्रायखो कक सानानै थांगे धर्ज शक्ति होनि सामानि इ अबरक जों दै दंनानै नांगौ बेबाक नानो जों मेनेज खालायनानै होनगांगाय आबनि बागै जों बेबायनाव धानसा बाक्सा कक्लाम हामजाग मुं बेनानै जों आबो बेबाक जिनि बाद जा फारि हाइन हाइन हाइन कक दग साबो दं हेलो दिपर काहाम ताकुक दिपर काहाम हेलो खनाय जात हेलो साबुबो दं माने खोनालिया कक गोरै जों हायनाहाय नरकनि कक दुख फाय दं फानाय नायगोरना हेलो जरा जरा जों गोरोङै मानिया रावखौ जिनि गोबां मा देरा मुं दङै फानो मानो आबो अर फानाङै मानो लाइनाव फानाङै मानो हाया दा जोंथ' दाबुक न' बारावसो कक सालाय दं माबा जे सालाय दङै मान माने अबसे बेलाय हाया दा जों अ जे साय दं मा माने अबरकनबो जों बेलौ रोनानै नांगौ अ जों जे गोरोंलाय दं माने नबारबाय जों कक सालाय दं माने अब जों न' सोनामनाय रक सोनामै रोखा सेब गाहामै रोखा अ सेब गाहाम रकनो जों नांमानि सामगु फोनांना नां केवनो गायसासो कल खालायै कक दगनि बिसिंदै ककदमा नाखा कक साखा गोबां मानो अबाहाय जिनि बाया दङ जिनि नख नुखुंनि बरक दङ जाहाथे मासा दङ जों अबाहाय किसा कक दरबायबो जों आसुग फेसिलिटि दङै दङ गावरकनोबो जों सामगु फोनांनानै नांगौ जतनो कक दगनि बिसिंदै फानो जों ककदमा नाहारनानै नांगौ नायनायनानै हायनाय कक दगो साबो दं हेलो हेलो हेलो दिपर काहाम ए मरै मरै के खनावो आहा तां मुलुमुइ दं खासा नों हायसे आहा बेलाय के हामजाग मुं आफारन न हाथाय लामसक सादै द ता मोनखा नों आब' सागारा दे हेल' बेलाय दा बारै जाग नों दाबुक बाहायनखा हायसे बेलाय बेलाय हामबाय बेलाय खाना हामबाय बिथि रक जाय दा दं अ हायसे गाहामखै नायजाग दे डक्टर बाय गाहामखै नायजाग दे हाया दा दाबो बिथि जाखा फुलि हंगांखाय आबनि दैबो नायजाग दे हाया दा बेलायखे हामबाय बेलायखे हामबाय आव न'नो उलां कक दख्लायना हामबाय आव आबो न जिनि नायनाय दे दाबो जिनि बुखुक साख हामिया सरि हामिया जों अबाहाय न केबैया केबो ओंगै दङ साख हामिया जों नायनाय दे गाहाम दंफोर हंगाय जों आसो खोज नालाया खबर नालाया जतन जानि जा लाइफ दङै दङ बायलायाङै दङ जानि सामख्लाय दङ होनायनाय जों वानसुग लायै दङ जरा किसिसा मामफोर रग फानो जों किसिसा फानो कक तुमार नानानै नांगौ अबनो जिनि हामजाग मुं बिर मुं हामजाग मुं र' मुं जों केबनो रां पैसा रांजा रिजा रि जमरै माखासेमि जों हामजागौ होनै हामानै आबो सहैया जों कक तुमा ना मानै कक लामसा मानै कक गायसा गोजां गायसा किसिसा मोनै मुं र' मुं अब सुखबाय न जिनि हामजाग मुं रोमानि गलायो जों आर जे बोखा सुद्रांन न बा हामजाखनाय न बुजिनाय बरक गे असुखबाय नो बक नना हामजागे खागजामा मानै दंनाय हानहायनायानो कक दुगो साबो दं हेल' हेल' आंनि खरांनो आं खोनाय दं माग लायसुअ गग्रै

आउ जों खनाथथग रिजाब मुं खनाय मानलायखा फारिखे जों हायनो हाय दायबो खनाथथग रिजाब मुं खनालाय माने बखाक जों थांलायवानो अजरावो अजराव खनालायनो फायदि ताखुक थैजानाय बिमल देबरमा बे रिजाब मुं खनालायनो अजरावो

आओ बेला खाना खाना तो रजा मूंग जंग खाना लाओ खा हाइन हाई खाना तो रजा मूंग खाना लाइम बखा जंग थांग लाइवान फायदे खाना तो रजा मूंग हाइन हाई खाना लाइवान ओजाराओ जंग हाइन हाई खाना लाइन खाना तो रजा मूंग

आव बेलाय खना खना तो रिजा बुंजों खानाय मान लायखा आसे खना तो खना तो गोबां रिजा बुंजों खाना लायखा आव फारिखेजों दाइबो खना तो खना तो रिजा बुं खाना लायमान बखा थांलायनाय जिनिया गदे गिसा जरा खबा अजराव खाना लायनाय जयन्त जमातिया बायदि साबजा रिजा बुं खाना लायनो फायदि खना तो रिजा बुं ना

एक दिन तुम्हारे मेरे खेले हो, अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला,

0: फिर भी मोरे जियाराम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तो हर जवाब नहीं,

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए PM सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा

0: हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी

0: एमपी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। Oh, no!

देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।